0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। आफात से निमटने के जिम्मेदार नेपाली हुकूमत के एक ओहदेदार का कहना है कि हुक्काम गुज़िश्ता माह आने वाले हलाकत खेज सैलाबी रैले और मिट्टी के तोदों से मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव धर्म राज अप्रेती ने जुमेरात को नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में NHK से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरिया के किनारे और आफत से मुतासरा दीगर इलाकों को आबादी के लिए गैर महफूज करार देने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तवील मुद्दती आबादकारी के लिए महफूज मकामात का इंतखाब कर रही है और स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सहूलियात की मुंतकिली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए मकामात पर मुंतकिली मुमकिन तौर पर अगले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी और हुकाम आर्जी रिहाइश की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जापान से तआवुन तलब करने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि पन बिजली घरों की सुरंगों में फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुमकिन तौर पर 1 से 2 हफ्तों में खत्म हो सकता है। शिमाली कोरिया की तरफ से अगवा किए गए जापानी शहरियों के खानदान के अरकान ने तमाम बाकी मानदा अगवा शुदगान को जल्द अज जल्द घर वापस लाने के लिए मदद की अपील करने की खातिर वॉशिंगटन का दौरा किया है। योकोता ताकुया अगवाशुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल के पहले साल की तालिबा थी। ईजुका को इचिरो की वालिदा तागुची जायको को उस वक्त उठा लिया गया था जब वो सिर्फ 1 साल के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी दारुल हुकूमत में सरकारी हुक्काम और कानून साजों से मुलाकात के बाद बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगवाशुदगान के रिश्तेदार बूढ़े हो रहे हैं और ये कि उन्होंने इस मामले के सिलसिले में अमरीकी हुकूमत से तफहीम और तआवुन की दरख्वास्त की थी। योकोता ने कहा कि उन्होंने लोगों को अपनी वालिदा साकिए और अपनी अगवाशुदा बहन की तस्वीर दिखाई। साकिए अब 90 साल की हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जज्बे के साथ पहुंचाए गए और सुनने वालों की आंखों में देखकर बोले गए अल्फाज अमरीकी मुआशरे में गूंजेंगे। ईजुका ने तश्वीश जाहिर की कि अगर रिश्तेदारों ने आवाज उठाना जारी न रखा तो ये मामला भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं अपीलें करते रहना चाहते हैं। जापान के मयारी तवील मुद्दती हुकूमती बॉन्ड का मुनाफा तकरीबन 30 सालों की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। जुमे को एक मरहले पर 10 साला बॉन्ड का मुनाफा 3.115% तक पहुंच गया। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि ये शरह अगस्त 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। खाम तेल की बुलंद कीमतों की वजह से अफरातज़र के खदशात ने अमरीकी और यूरोपी तवील मुद्दती शरह सूद को भी बढ़ा दिया है। इसके बायस जापानी हुकूमती बॉन्डों की फरोख्त में इजाफा हुआ और मुनाफे की शरह बुलंद रही।
1: और सामीन, आखिर में आज की अहम खबर का खुलासा पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन में अपनी सरबराही मुलाकात समेट ली है। जुमेरात को होने वाली मुलाकात मई में ट्रंप के बीजिंग के दौरे के बाद इस साल उनकी दूसरी रूबरू बातचीत थी। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 25 सितंबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बृहस्पतिवार को वॉशिंगटन में बैठक संपन्न हो गई है। ये इस साल उनकी दूसरी प्रत्यक्ष बैठक थी। इससे पहले ट्रंप ने मई में पेइचिंग का दौरा किया था। शिखर बैठक से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में शी का स्वागत किया। 2023 के बाद ये शी की पहली अमेरिका यात्रा है। ट्रंप ने कहा, इस यात्रा के दौरान हम सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और सुपर इंटेलिजेंस SI संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में आज हम जो निर्णय लेंगे वे आगामी कई दशकों तक शांति व समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। शी ने कहा, चीन और अमेरिका की राष्ट्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन स्पष्ट, गहन और निरंतर संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और मतभेदों को दरकिनार करते हुए तथा आपसी विश्वास का रिश्ता बनाते हुए साझा आधार तलाश सकते हैं। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि शी ने आशा व्यक्त की है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने के सही दृष्टिकोण को बरकरार रखेगा। शिखर बैठक के बाद पत्रकारों ने ट्रंप से कई सवाल पूछे, जैसे कि क्या उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर चर्चा की। इस पर ट्रंप ने बस इतना कहा कि उनकी बैठक शानदार रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित राजकीय भोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीन और अमेरिका के बीच सहयोग के इतिहास का जिक्र किया। व्हाइट हाउस में बृहस्पतिवार को ट्रंप और शी की शिखर वार्ता के बाद रात्रिभोज का आयोजन किया गया। रात्रिभोज के दौरान अपने स्वागत संबोधन में ट्रंप ने कहा, अपने अपने देशों के नेताओं के रूप में राष्ट्रपति शी और मैं दोनों मानते हैं कि हम अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच संबंध अटूट हैं और हमारे पहले से कहीं बेहतर रिश्ते हैं। ट्रंप के साथ शिखर वार्ता का जिक्र करते हुए शी ने कहा कि वे कई मुद्दों पर नई आम सहमति पर पहुंचे हैं। शी ने यह भी कहा कि 80 साल से भी पहले चीनी और अमरीकी जनता जापानी सैन्यवादी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। उन्होंने कहा कि खून और आग में तपी दोस्ती निश्चित रूप से पीढ़ियों तक कायम रहेगी। अमेरिकी पक्ष ने शिखर बैठक के संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय देश नावरो के राष्ट्रपति डेविड आडियांग ने घोषणा की है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से अलग हो जाएगा। गौरतलब है कि नावरो को पहले नावरू के नाम से जाना जाता था। आडियांग ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। आडियांग ने ICC को एक बहुपक्षीय एजेंसी बताया जो अब नावरो के लिए तेजी से अप्रासंगिक होती देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके न्यूयॉर्क से रवाना होने से पहले ICC से अलग होने संबंधी दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे। इससे पहले उसी दिन संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ICC की निंदा की थी। उन्होंने विभिन्न देशों से ICC से अलग होने का आग्रह किया था। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने ICC अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित न्यायालय के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनके तहत अमेरिका में मौजूद उनकी सभी परिसंपत्तियां फ्रीज करने का प्रावधान है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल सरकार के आपदा राहत प्रभारी का कहना है कि प्रशासन पिछले महीने आई बाढ़ और मृदास्खलन से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्म राज उप्रेती ने बृहस्पतिवार को राजधानी काठमांडू में एनएचके से बात की। उप्रेती ने कहा कि सरकार आपदा से प्रभावित नदी के तट और अन्य क्षेत्रों को बसने के लिए असुरक्षित घोषित करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार सुरक्षित स्थानों का चयन कर रही है जहां लंबे समय तक लोगों को बसाया जा सकता है, साथ ही स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं को स्थानांतरित करने की दिशा में काम हो रहा है। उप्रेती ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में लोगों को दूसरी जगह ले जाने का काम शुरू होने की संभावना है और अधिकारी अस्थायी आवासों की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जापान से सहयोग प्राप्त करने का इरादा रखती है। उप्रेती ने ये भी बताया कि पन बिजली संयंत्र की सुरंगों में फंसे होने की आशंका वाले लोगों के लिए तलाश अभियान 1 से 2 सप्ताह में समाप्त हो सकता है। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने वॉशिंगटन का दौरा कर शेष सभी अपहृतों की शीघ्र स्वदेश वापसी की अपील की है। गौरतलब है कि परिजन समूह के प्रमुख योकोता ताकुया की बड़ी बहन मेगुमी का अपहरण तब किया गया था जब वे 7वीं कक्षा में थीं। उनके अलावा ईजुका कोइचिरो की मां तागुची याए का अपहरण तब किया गया था जब ईजुका 1 वर्ष के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी राजधानी में सरकारी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात के बाद बुधवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि अपहृतों के परिजनों की उम्र बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अमरीकी पक्ष के समर्थन और सहयोग की अपील की। योकोता ने बताया कि उन्होंने लोगों को अपनी मां साकिए और अपनी अपहृत बहन की तस्वीरें दिखाई। साकिए अब 90 वर्ष की है। योकोता ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रोताओं की आंखों में आंखें डालकर बोले गए जोशीले शब्द अमरीकी समाज पर गहरा प्रभाव डालेंगे। ईजुका ने चिंता व्यक्त की कि अगर परिजनों ने आवाज उठानी बंद कर दी तो ये मुद्दा भुला दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, अपील करते रहेंगे। जापान के प्रमुख दीर्घावधि सरकारी बंध पत्रों की ब्याज दर लगभग 30 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को 10 वर्षीय बंध पत्रों की ब्याज दर कुछ समय के लिए बढ़कर 3.115% तक पहुंच गई। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि यह आंकड़ा अगस्त 1996 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रा स्फीति को लेकर चिंताओं ने अमेरिका और यूरोप में भी दीर्घावधि ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इस वजह से जापान के सरकारी बंधपत्रों की बिकवाली तेज हुई और ब्याज दर में उछाल आया। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।